हौ मैं करै करावै हौ मैं पाप कोय ले अन जमावै गो आया काल दुखदाई होए जो बीजे सो खबलावै गो संतो राम नाम तन संचो लै खर्च चले पथ पावै गो खाए खर्च देवै बहु तेरा हर दिन दे टुट ना आवै गो राम नाम तन है हृदय अंतर तन गुरसरनाई पावै गो नानक दया दया कर दीनी दुख दालद भंज समावै गो कानड़ा महला चौथा मन सतगुर सरण ते आवै गो लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गो रहाओ सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गो ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गो सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गो ज्यो अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन ते आवै गो सतगुर सरण सरण मन पाई सुदा सुदा कर त्यावै गो दयाल दीन पए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गो सतगुर सरण पए से थापे तिन राखन कहो प्रभ आवै गो जे को सरसन दै जन उपर फिर उल्टो तसै लगावै गो हर हर हर हर हर सर सेवै तिन दरगै मान देवावै गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावै हर घर मिल मिल मिलावै गो गुरमुख नाथ।

0: हर हर हर हर नाम है, गुरमुख पावे कोए, हम ममता नास होए, दुरमत कड्डै धोए। नानक अंदर गुण उचरै, जिनको तुर लिखिया होए महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर, आपे करे सो होए, हर आपे आप वरदा, हर जे वड्यावर ना कोए। जो हर प्रभ पावे सो थीऐ, जो हर प्रभ करे सो होए, कीमत करै ना पाइया, बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहिया, तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जो तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना, सब त्यावै तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाचै सब मंग मंगना, सेवक ठाकर सब तू है तू है, गुरमती हर चंग चंगना। सब कहो मुखो रिखी केस हरे, रिखी केस हरे, जित फा जित पावे सब फल फलना। सलोक महला चौथा, हर हर नाम ते आए मानव, हर दरगह पावे मान, जो इच्छा सो फल पाए सी। गुरसबदी लगे ध्यान, किल विख पाप सब कट्टी है, हम मैं चुकै गुमान, गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पिछान। हर हर कृपा तार प्रभ, जन नानक जप हर नाम, महला चौथा। हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आए। सतगुर कै भाणे जो चलै, तिन दालद दुख लह जाए, अपने भाणे कने ना पायो, जन वेखो मन पति आए। जन नानक दास दास है, जो सतगुर लागे पाए पौड़ी। तू थान थनंतर भरपूर है, करते सब तेरी बणत बनावनी, रंग परंग सिष्ट सब साजी, बहो बहो बिद भांत यो पावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरतै, गुरमती तुदै लावनी। जिन होहे दयाल, तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो राम रमो, श्री राम रमो, जित दालद दुख पुख सब लै जावनी। सलोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर धार, विच संगत हर प्रभ वरदा, बुझो शब्द विचार। मन हर हर नाम ते आया, बिखाऊ मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेतियो, तिन जुए जन्म सवार। गुर तुठे हर चेताया, हर नामा हर उर धार, जन नानक ते मुख उजले, ते सच्चा दरबार महला चौथा। हर कीर्त उत्तम नाम है, विच कल जो करनी सार, मत गुरमत कीर्त पाई है, हर नामा हर उरहार। वडभागी जिन हर त्याया, तिन सौंपिया हर भंडार, बिन नाम है जे कर्म कमा।
1: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
2: Magandang araw po!
3: Hello, Winnipeg!
4: Mabuhay, Winnipeg!
5: Magandang araw, Winnipeg!
4: Mabuhay at magandang umaga, Winnipeg!
6: Magandang umaga! Kumusta ka? Okay lang, ikaw!
7: Narito na!
8: Good morning, Philippines!
9: Good morning, Philippines!
10: Good morning, Philippines!
11: Good morning, Philippines!
12: Pagtangkilik sa ating mga OPM, awiting Pilipino,
13: palagi ang mapapakinggan dito lamang po sa CKJS,
14: your Filipino radio station in Winnipeg.
15: Mabuhay! Mabuhay ang mga awiting Pilipino!
16: Mabuhay!